हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हर चिंता, हर परेशानी, हर दुष्टाई तू हमारे जीवन से निकाल दिए, से धन्यवाद करते। इस रात के समय के लिए हम धन्यवाद करते। हमारे एसपी इंटरनेशनल वर्ड ऑफ मिनिस्ट्री का ताबा तेरे हाथ में देते प्रभु। हम मांगते हमारे सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में देते, सारे परिवारों को तेरे हाथों में देते प्रभु। तो हर एक के जीवन में कार्य कर, हर एक को शुद्ध कर, हर एक के मन विचारों को बदल दे। हमें तो चला, दावित कहता है प्रभु तेरे मार्ग को मुझे दिखा, दुष्ट हाथों से मुझे फंसने मत दे। तेरा मार्ग मुझे दिखा प्रभु, तेरे पंथों पर मुझे चला प्रभु। आज हम मांगते एक मन होकर, हम आते प्रभु तेरे सामने नम्र होकर, विश्वास के साथ आराधना और आत्मा से सच्चाई से करने के लिए हमारे मनों को इस समय तैयार कर। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा स्वागत करते, स्वागत करते राजा। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, तू स्तुति के योग्य है, तू आराधना के योग्य है। यस प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद।

सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान तेरी युक्ति कोई भी ना होती विफल। सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान तेरी युक्ति कोई भी ना होती विफल। तेरे निर्णय में को कौन बदल सकता, प्रभु मेरे लिए तूने जो ठाना उसको तू पूरा कर।

सब कुछ कर सकता है सर्वशक्तिमान। प्रभु तेरी युक्ति कोई भी ना होती विफल, तेरे निर्णय को कौन बदल सकता। प्रभु मेरे लिए तूने जो ठाना उसको तू पूरा करता है। तेरी हो आराधना मेरे जीवन भर प्रभु। हालेलुया। मुझे

प्यार करता है, सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान, तेरी युक्ति कोई भी न होती विफल, तेरे निर्णय को कौन बदल सकता प्रभु, मेरे लिए तूने जो ठाना।

आंखों से अपने हम देखेंगे, कब आवेगा तू प्रभु दिल मेरा आपता है। यस प्रभु, सब कुछ तो कर सकता है प्रभु, तूने मुझे परखा है सोने के समान। यस प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु, सब कुछ यीशु तू ही है, मेरा सब कुछ यीशु तू है प्रभु। धन्यवाद। सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है इस दुनिया में मेरे लिए, सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है।

में मन्ना मुझको देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। पाप को क्षमा देता है, रोगों से वो मुक्ति देता है, प्राण को वो बचाता है, वो

यीशु है, जो उसमें खाता पीता अनंत जीवन पाता है। मेरा सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए यीशु सब कुछ है, यीशु सब कुछ है। माता पिता भाई बहने बंधु मित्र सब जने, मेरी खुशी मेरा बल मेरा सब कुछ यीशु है। माता पिता मुझे छोड़ देवे, भाई बहने मुझे छोड़ देवे, मेरा मित्र मेरा मेरी खुशी मेरा जीवन सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ।

प्रभु के वचन सुनाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। प्रभु के वचन कम सुनाएंगे, चाहे मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के ही गुण हम गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे, चाहे मुसीबत से गुजरना पड़े।

उठो, यीशु के करीब है, ये सोने वाले जाग उठो, यीशु करीब है। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु तू, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु तू।

रहो, खुदा से तुम क्यों दूर हो, मन के करीब है सबको, शिफाएं देता हो, आत्मा को भी दान देता, धन्य है परमेश्वर तेरा वचन, धन्य है पाओ में आशीष तेरी, तेरी दया ही धन्य है। इस प्रभु प्रभु हम तुझे तेरा धन्यवाद करते, तू धन्य, तू आशीष के लिए धन्य है, तेरी तेरी वंदना धन्य करते प्रभु, तेरे नाम को धन्यवाद करते प्रभु। यस प्रभु धन्यवाद, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस।

0: इस प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद तेरा, सदा के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हम तेरे नाम को इस रात के समय तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, क्योंकि तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू ही अद्भुत है, तू पराक्रमी है। तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, तू सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु। हम एक मन होकर तेरे चरणों पे आते, हमारे लोगों को तेरे हाथों में देते, जितने भी लोग बीमार है उनके लिए हम विनती प्रार्थना करते। आज कितने लोग प्रभु कैंसर में, पीड़ा में, पापों में फंसे हुए, बुराई में फंसे हुए, दुष्ट बातों ने फंसने के लिए, आज सभी हमारे खास करके विश्वासी भाई बहनों को तेरे हाथ में देते प्रभु। सभी को एक मन होकर तेरे चरणों पे आने के लिए मदद कर, बुराई से दूर रख, बुरी आदतों से दूर रख, बुरे व्यवहार से दूर रख प्रभु। आज हम मांगते हमारा भी इलाज कर प्रभु, हमें हमारे ऊपर शुद्धता आने दे, सारे अशुद्धता बातें निकल जाने दे और तेरे लोह से ढापे रख प्रभु। हम प्रार्थना करते मदद कर, तेरे अनुग्रह तेरी शांति हमारे सभी भाई बहनों के ऊपर मांगते, जितने भी क्रिस्ती बहने लोग है, भाई लोग है, सभी के जीवन में कार्य कर, आशीर्वाद करो प्रभु। हम तेरे हाथ में मांगते, सहायता करना, मदद कर, तेरे लोग से कवर कर, तेरे चीजों से कवर कर प्रभु। ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ, हर बुराई को तूने हटा दिया, मैं खास करके मेरी फिल्म पूनम उसके उसके देवर का ताबा तेरे हाथ में देती। कोई भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु, जो भी उसको प्रभु उसके हड्डी में जो भी तकलीफ है, पीड़ा है उसके शरीर के अंदर, वो आज हटा दे। एक साइड से वो कुछ भी नहीं कर सकता है प्रभु, शरीर को बनाया तूने, कुछ भी उससे गलती हो गई है तो उसको क्षमा कर। आज हम मांगते हैं उस भाई के जीवन में कार्य कर, उसकी अवस्था में कार्य कर, उसके विचारों में कार्य कर प्रभु। ऐसे में प्रार्थना करती प्रभु, मदद कर, तेरे पवित्र लहू से ढाप दे प्रभु, तेरे सामर्थ्य हाथों से ढाप दे। हम मांगते प्रभु पूनम के भाई के भी ताबा तेरे हाथ में देते, उसकी टीबी की आत्मा से आजाद कर दे, आजाद कर दे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। और जो भी लोग पीड़ा में है, गड़बड़ी में फंसे हुए है, उन सबको तो बाहर निकल। पूनम हमारे फ्रेंड सोनल के भी ताबा तेरे हाथ में देते, उस बेटी के जीवन में कार्य कर प्रभु। तू सिखा उसको, उसके चाल चलन, उसके विचार, उसके स्वभाव और सब कुछ प्रभु तेरे विरुद्ध न चलती होगी तो उसको चलने के लिए मदद, मार्गदर्शन कर। ऐसे में प्रार्थना करती प्रभु, सहायता कर, मदद कर, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह उस बेटी के ऊपर बनाए रखना। हम नहीं चाहते प्रभु वो गलत रास्ते पे चले, गलत बातों में फंसे, गलत चीजों को अपनाए प्रभु। ये सजना सवरना एक दिन तो निकल जाने वाला है। हम प्रार्थना करते जो वक उस सजने सवरने में लगा रही है प्रभु, उस समय हो तुझे दे, तेरी बातों में ढूंढने में मदद कर, प्रार्थना करने में मदद कर, तेरी व्यवस्था अनुसार चलने के लिए मदद कर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। मैं अपना ताबा भी तेरे हाथ में देती हूँ, मैं बहुत चाहती हूँ प्रभु तेरे राज्य में बढ़ूं, तेरी महिमा करूं, रात दिन तुझे याद करती रहूं, हर रुकावट के आत्मा को दूर कर दे। और मुझे प्रभु मेरे जीवन का ताबा तेरे हाथ में देती, मेरे अवस्था का ताबा तेरे हाथ में देते प्रभु, सहायता कर, मदद कर। उसी तरह में हमारे एसपी इंटरनेशनल वड़ा पिनिसी में सभी लोगों का स्वागत करते, तैयार कर प्रभु सभी बहनों को, भाइयों को, और जितने लोगों को बीमार है वो सब चंगे हो जाए, जितने परेशानी में है, गड़बड़ी में, कहीं बेटियां वीजा लेने के लिए रुकी हुई है प्रभु, सबको मदद कर, आशीर्वादित कर। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। उसी समान हम प्रार्थना करते प्रभु, जो जो बेटियां गर्भा के लिए रोकी हुई है सब बेटियों के जीवन में कार्य कर, जो बेटी बांझ है उनके जीवन में भी, जैसे तूने अलकना और हन्ना को आशीर्वाद किया और उनको विश्वास योग्य ठहराया, वैसे ही प्रभु हमारे सभी भाई बहनों को विश्वास योग्य ठहरा प्रभु, और तेरा आशीर्वाद बेटी के ऊपर आने के लिए मदद कर, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। सभी लोगों का, मेरे परिवार और लिटी भी ऑपरेशन होने जा रहे, उसका भी ताबा तू ले प्रभु, उसकी तो उसी तरह में मारिया क्रिस्टीन और कार्मेन को भी तेरे हाथ में देते, जो भी उसने लोगों ने डिसीजन लिया है वो सारा तेरे अवश्य होने के लिए मदद कर, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, सहायता कर। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। धन्यवाद, इस समय वचन की तरफ जा रहे, आज हम देख रहे विश्वास, जो प्रभु को, जैसे प्रभु अपने चेलों से बोल रहे हैं, तुम विश्वास करोगे तो तुम मेरी महिमा देखोगे। मार्थ, जब लाजरस मरता है, तब जब यीशु उसके कब्र के पास आता है, जब यीशु बात करता है और बोलता है, क्या तू विश्वास करेगी मार्था, तब तू अपने भाई को जिंदा होते हुए देखेगी। आज यही बात प्रभु आपसे और हमसे कह रहे हैं, जरा हम विश्वास करते तो प्रभु हमारे हर एक परिस्थिति को बदल सकता है। हम मांगते, हम प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से हमें सहायता कर, मदद कर, ऐसे हम प्रार्थना करते। आइए हम देखेंगे जॉन चैप्टर 11, उसमें से हम कुछ वचन को देखेंगे। पहला हम पढ़ेंगे 34 का वचन, और फिर हम 24 में जाएंगे। जॉन चैप्टर 11 हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन प्रभु तुमसे बातें करने जा रहे हैं, हमारी मदद कर, हमें सहायता करना प्रभु, तेरे लहू से हमें कवर कर, और वचन को समझने के लिए हमारी मदद कर। आज हम देखने जा रहे हैं यूहन्ना चैप्टर का 11वां अध्याय, उसमें से हम कुछ वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। पहला हम पढ़ेंगे 11:34 वचन, जॉन चैप्टर 11 उसका 34 वचन पढ़ेंगे। थर्टी फोर वचन पहला पढ़ेंगे। देखो 34 में और कहा, 33 भी पढ़ते हैं। 33 में देखो, जब यीशु ने उसको और यहूदियों को उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? अभी सब लाजरस जब मरता है, मर जाता है, तो कई लोग दुखी होते, कहीं रोते रहते, इधर यीशु भी रोया है, इधर इस अवस्था में यीशु भी रोया है उधर, और तब तब तुमने उसे कहा कहाँ रखा है? रोते हुए भी, उदास होकर भी प्रभु उधर आकर पूछ रहा है कि तुमने लाजरस को कहाँ रखा है? इसने जिक्र नहीं, तुमने उसे रखा, उसे कहाँ रखा है? तो उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। 34 हमने पढ़ा, ओके, और फिर हम पढ़ते 24 में, देखो क्या बोल रहे प्रभु इधर 24 का वचन में। हाँ, पहला 21 से हम पढ़ेंगे। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। अभी यहाँ मार्था ने यीशु से कहा, कि तू जो होता प्रभु तो मेरा कभी भाई नहीं मरता। और आज हम ये बात इधर कहने जा रहे हैं कि जब यीशु हमारे लिए नहीं मरता तो आज हम कहीं के नहीं होते। और इधर मार्था बोल रही है, प्रभु तू आज नहीं होता वाह तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। यही बात आज हम प्रभु यीशु से कुछ बातें सीख रहे हैं। प्रभु यीशु लाजरस के दरम्यान हमसे बात कर रहा है। लाजरस तो मरा हुआ है लेकिन वो आत्मा में जीवित होने जा रहा है। प्रभु उधर आकर उसको आत्मा में जीवित करते हैं। शारीरिक में तो वो मर चुका है लेकिन आत्मा में। इसलिए प्रभु इधर क्या कह रहा है देखो, 24 जरम पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं मार्था ने उसे कहा, मार्था ने कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उसे कहा मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। और यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन कौन हूं मैं हूं, कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। इसलिए प्रभु यीशु क्या बोला है कि तुम मेरे साथ क्रूस में मारे भी जाओगे गाड़े भी जाओगे और मेरे पुनरुत्थान के स्थान में तुम फिर सब जीवित होगे, जीवित उठेंगे, जीवित उठोगे कहा है पुनरुत्थान जीवन मैं ही हूं, कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी हो जिएगा। आज हम क्रिस्ती में मर जाते तो हम जी उठेंगे क्योंकि तू इस बात पर विश्वास करती है कि तेरा बेटा तेरा भाई पुनरुत्थान के साथ वो जी उठेगा, ऐसा तू विश्वास कर रही है। उसने उससे कहा हाँ प्रभु मैं भी विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। क्या है? तू ही है। इसलिए पुनरुत्थान जीवन कौन है मैं ही हूं परमेश्वर ही है। तो पुनरुत्थान जीवन प्रभु है तो हम हमारे अंदर वो आ गया कि प्रभु यीशु हमारे और आपके अंदर जीवित है। उसने लाजरस को मरे में से जी उठाया, जीवित कर दिया। आहिर की बेटी मरी हुई थी उसको जिंदा किया। वो 38 साल का आदमी बचपन से ही अंधा था उसको प्रभु ने चंगा किया, उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। लाजरस के विश्वास ने लाजरस को फिर जी उठाओ क्योंकि वो जीवित था। हम जीवित प्रभु की आराधना करते तो हम जीवन ही पाएंगे। हमें जीवन पाना है, हमें मृत्यु को नहीं अपने कबूल करना है, हमें जीवन को कबूल करना है। हम देखेंगे 1 सैमुएल का 2 अध्याय से 10वां वचन पढ़ते हैं। उसमें उधर एक हन्ना हन्ना करके एक बहन थी इसराइल के गांव में, उसको कोई बच्चे नहीं थे लेकिन उसने विश्वास करके प्रभु से प्रार्थना की। वो भी रोई है, रोकर प्रार्थना कर रही है। कई बार एली उसको आकर बोला भी क्या मार्था तू क्या ड्रिंक करके आई है, तो मार्था बोलती नहीं मैं तो अपने प्रभु से बातचीत कर रही हूं। तभी एली बोलता है उसको जा जो तूने प्रार्थना में मांगा है वो तेरी प्रार्थना सुनी गई है। उसने विश्वास से मांगा जरा हम विश्वास से मांगते तो प्रभु हमारी हर एक जरूरत पूरी करेगा। हम प्रार्थना करते, यस प्रभु, आज की इस वचन के दरमियान तुमसे बातें कर। तू अद्भुत है, तू पराक्रमी, तू तेरा राज्य बढ़ने दे, मेरी परिस्थिति बदल जाने दे प्रभु, हमारे जीवन में प्रेम आने दे जो हर बच्चे के लिए प्रभु दिया जाता है, वह आज हमारे परिवार के अंदर भी आने दे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, तू सहायता करना। जैसे मार्था को बोला कि तू विश्वास करेगी तो तू मेरी महिमा देखेगी, जब हम विश्वास करते आज तो हम प्रभु की महिमा देखेंगे। हम प्रार्थना करते, धन्यवाद प्रभु, हमारे साथ जुड़े हुए सभी बच्चों को तेरे हाथ में दे दे, आशीर्वाद कर। नए बॉस को भी आशीर्वाद कर, उनके बाल बच्चों को आशीर्वाद कर, हमारे अवस्था को तो बदल, हमारे अब हर बातों में तुम्हें आशीर्वाद करता है। ऐसे धन्यवाद करते, आगे भी होकर आशीर्वाद, ऐसे हम प्रार्थना करते, सहायता कर, मदद कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर,
1: Praise the Lord, Sumita. Thank you. God bless you. I pray
0: God
1: for
0: bless.
1: you.
0: You know, today I want, do you have time that 2 minutes taking for you? Today's my verse has chapter 11, John chapter 11. Verse has 34. You know, there is 34 words saying. Yes, 1 minute. Again, I take out. 34 words saying here. Because he is speaking to Martha. God speaking to Martha. First he spoke for Martha. He, when you trust him, ki I am living God, and I am the resurrection, I am the way, and I am the truth, and I am the resurrection. He speaks spooky. And I like it, that words about, because here Jesus spoke the Martha. Are you trusting ki Lazarus will be live again? God talk to us, whatever our situation today, whatever, we don't know, but today God's telling us, if you
1: Amen.
0: Are believe, the God resurrection is with us, because he is living God, he is with us, he is already living, he died, third day he is again raised up, and he is staying with us, all of us, he with us, our life, he is never be far away, he want to ready to us, today, ready to us.
1: Amen. Amen. Amen.
0: For some time, sister, we could not understand. Not. Even we today not understanding what going to. We still in the world. And world is not spoiling. And mostly David divide coming to healing to believers people. Yes, that's why we have to very very carefully walk in the Lord. It is trying to destroy the people, when we have to trust in the Lord. Our Lord
1: Amen.
0: Only can give us the victory for us. That's it.
1: Yes, we pray. Yes, Lord, Heavenly Father, we praise you. We glorify you. Yes, Father. Yes, Martha and Maria, they were crying for their brother, but you came forth there. You did a miracle over there, Father. Yes, Lord Jesus, you are the miracle working God. They were crying because they asked you, Lord, if you are here, my brother cannot die. But you know, oh God, you want to do the miracle in their life, but you did it. As, oh God, today we believe in you, we trust in you, Lord. There is no way for us to trust. There is nobody in this world to trust, oh God. These days we can see around the world, Lord, there are, Lord, in the families or out or in and workplaces, everywhere, there are wicked things are happening, oh God, because the devil is trying to lead the people at the wicked places. But you came to give us the life, oh Jesus, and you died for us, you rose again for us, oh Lord Jesus. Thank you, Lord. Give us that faith. Even though 3 days, 4 days, 1 month, 1 year, 3 years, whatever the counting about the dates of God, let us trust in you. Let us wait for you. Let us believe you and trust in you, O God Almighty. Let give all of us that faith. Lord, we don't have nobody these days to trust, but Lord Jesus, you are the one yesterday, today, and forever unchangeable God. You can only do great and mighty things. Yes, you die, but you rose again in 3rd day, as you spoke to Martha and Maria, as you helped them to rose again, the brother who died, oh God, after 4 days. Lord, sometimes our faith is dying, oh God. Sometimes our trust is dying, oh God. Our belief is dying. Lord, let it come again. Let it, oh God, you bless us, oh God. Let us trust in you. Let us believe in you. Even though how many days or year, whatever, that you are the God, you can answer our prayer. Pray for Sumedha. Bless her, oh God. Be with her, guide her. Lord, when she go to bed, be with her and her husband, oh God. And tomorrow, whatever they do, wherever you go, they go, Lord, every part of their life, when they're driving up and down, Italy to Paris, Paris to Italy, Lord, be with them, guide them, give them good strength and good sleep, let peaceful sleep, and be with them, guide them. Bless them, oh God. Bless all their family members also, God. Lord, all the glory belong to you. Thank you for the word. Thank you for the praises. Thank you for this wonderful time. All glory belong to you. In Jesus' name we prayed. Amen, amen. Amen. Thank you, Sumedha. God bless you. Good night.
0: God bless you, sister. Good night.
1: Hallelujah. Hallelujah. Stotram andavare. Appa. மார்த்தாலும் மரியாலும் தன் சகோதரனை இழந்து கண்ணீரோடு இருந்தாலும் என் தேவனே, நீங்கள் 4 நாள் ஆகியும் வந்து அற்புதம் செய்தீங்க என்று அநேகருடைய விசுவாசம் செத்ததாயிருக்கிறது, நம்பிக்கை செத்ததாயிருக்கிறது, எதிர்பார்ப்புகள் செத்ததாயிருக்கிறது. ஆனாலும் எங்கள் இயேசு தெய்வமே, நீங்கள் வந்தால் அற்புதம் நடந்துவிடும், நீங்கள் வந்தால் அதிசயம் நடந்துவிடும், நீங்கள் வந்தால் சத்துரு வெக்கப்பட்டு ஓடிவிடுவான். ஆண்டவரே, எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுங்க ஆண்டவரே, எங்கள் நம்பிக்கையை வர்த்திக்க பண்ணுங்க ஆண்டவரே. அப்பா, நாங்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் ஆண்டவரே. நாளுக்கு நாள், டே பை டே, நிமிடத்துக்கு நிமிடம், ஹவர்ஸ் பை ஹவர்ஸ் ஆண்டவரே, நாங்கள் உங்களுடைய பாதத்திலே நம்பிக்கையோடு காத்திருக்க உதவி செய்யுங்க ராஜா. உங்களை துதிக்கிறோம் இயேசப்பா, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஜப துதி ஆராதனைகளுக்கு நன்றி, செய்திகளுக்கு நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, சுமேதாவை ஆசீர்வதிங்க, நடத்துங்க ராஜா. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். துணையாளவரே, இந்த இரவிலே யாரெல்லாம் நம்பிக்கையற்றவர்களா இருக்கிறார்களோ, நம்பிக்கை செத்து போனவர்களா இருக்கிறார்களோ, நம்புவ போவதற்கு யாரும் இல்லை என்று நிற்கிறார்களோ, அன்பான தகப்பன் இயேசுவே, நீங்கள் இடைப்படுங்க, ஒவ்வொருவரோடும் இடைப்படுங்க. ராஜா, நீங்கள் இடைப்படுகிற தேவன், நீங்கள் பேசுகிற தெய்வம் ஆண்டவரே, நீங்கள் இடைப்படுங்க, நீங்க பேசுங்க, அற்புதம் செய்யுங்க. அற்புதமானவரே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். அதிசயமானவரே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். சர்வ வல்லமையுள்ளவரே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். கிருபை நிறைந்தவரே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி உங்களை நாங்கள் நன்றி ஹிருதயத்தோடு துதிக்கிறோம், நன்றி உள்ளத்தோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, நன்றி உணர்வோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. துதிக்க பாத்திரரே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துகிறோம். துதிகளின் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவரே, எங்கள் ஒவ்வொருடைய விசுவாசத்தையும் நீங்கள் வர்த்திக்க பண்ணுங்க ஆண்டவரே. நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசத்தோடு உடைய சமூகத்திலே காத்திருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. நன்றி ஏசப்பா, நன்றி, நன்றி தெய்வமே, நன்றி, நன்றி, நன்றி. நாளைய தினத்திலே இனி தொடர்ந்து நடக்க போகிற ஒவ்வொரு ஜப நேரங்கள், ஜபங்களை நடத்துகிற சகோதர சகோதரிகள், நாளைய தினத்திலே நடக்கிற ஆராதனைகள் ஒவ்வொன்றுக்காக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் ஒவ்வொன்றையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, ஆண்டவரே விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். நாளைய தினத்திலே ஆண்டவரே, அப்பா தெய்வமே, உலகத்திலே எங்கெல்லாம் ஆராதனைகள் நடக்கிறதோ கர்த்தாவே, எங்கெல்லாம் ஜனங்கள் உங்களை துதிக்கிறார்களோ ஆண்டவரே, எங்கெல்லாம் ஜனங்கள் உங்க பாதத்திலே காத்திருக்கிறார்களோ, உபவாசத்தோடு ஜெபிக்கிறவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய விண்ணப்பங்களுக்கும் எனப்பா நீங்கள் பதில் கொடுத்து நீங்கள் அற்புதங்களை செய்தருளுங்கப்பா. இயேசுவே, நீங்கள் அற்புதர், அற்புதர், அற்புதர், அற்புதர், அற்புதர், அற்புதர், அற்புதர். அற்புதமானவரே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். அதிசயங்களை காண செய்கிறவரே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். நாளைய தினத்தில் எந்த தடைகளும் இல்லாதபடிக்கே ஒவ்வொரு ஊழியங்களும் சரிவர நடக்கச்சும் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, எந்தெந்த ஊழியக்காரர்கள் பிள்ளைகள் ஆண்டவரே சுகவீனமாய் பலவீனமாய் இருக்கிறார்களோ, ஜபிக்க முடியாத நிலையில இருக்கிறார்களோ, ஆண்டவரே எல்லாருக்கும் நல்ல சுக பல ஆரோக்கியங்களை கொடுங்க. ஒவ்வொருவரும் வந்து உடைய சமூகத்திலே நின்று ஜெபிக்கத்தக்கதான கிருபைகளை கொடுங்க ஆண்டவரே. கிருபையுள்ள தேவனே, நன்றி செலுத்துகிறோம். வீட்டுக்கு தேவையோடு இருக்க வர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, தொழில் தேவையோடு, விசா தேவைகளோடு, குழந்தை பாக்கியத்துக்காக, பயணங்களுக்காக ஆண்டவரே, பயணங்கள் தடைப்பட்டு விமான பயணங்கள் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரின் ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. இந்த கிழமையிலே மற்றும் இந்த ரெண்டு மூன்று நாட்களுக்குள் இளைஞர்களை 36 பேர் ஆண்டவரே விபத்துகளிலே மரித்திருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே. கொலைகள், தற்கொலைகள், விபத்துகள் என்று அந்த குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஒரே குடும்பத்திலே ஒரு தகப்பன் மூன்று பிள்ளைகளையும் மூன்று மகன்மாரும் தன் தகப்பனை பார்க்க வந்திருக்கிற நேரத்திலே அவர்கள் தண்ணீரிலே முழுகியிருந்த இதெல்லாம் ஆண்டவரே ஞானமற்ற செயலாகத்தான் தெரிந்தாலும் அந்த குடும்பங்களுக்கு செபிக்கிறோம். இத்தனை வருடங்களாய் அவர்களை வளர்த்து மூன்று பிள்ளைகளையும் ஒரே அடியாக ஆண்டவரே பறிகொடுத்திருக்கிற அந்த பெற்றோருக்காக செபிக்கிறோம். அந்த கிராமத்து மக்களுக்காக கூட செபிக்கிறோம். இன்னும் யாரெல்லாம் தனக்கு அன்பானவர்களை இழந்து கண்ணீரோடு இருக்கிறார்களோ, தனக்கு அன்பானவர்களே பிரிவினாலே வேதனைப்பட்டு இருக்கிறார்களோ, அத்தனை குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பிதாவாகிய தேவனே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நாட்களிலே தேவ ஊழியக்காரர்கள், ஊழியக்காரிகள், கத்தருக்கண்டு ஓடினவர்கள், கத்தருக்கண்டு ஊழியத்தை செய்தவர்கள், இன்றைக்கு சுகவீனப்பட்டிருக்கிறவர்கள் உண்டு, பலவீனப்பட்டிருக்கிறவர்கள் உண்டு, ஊழியங்களுக்கு போக முடியாமல் இருக்கிறவர்கள் உண்டு, ஆலயங்களுக்கு போக முடியாமல் இருக்கிறவர்கள் உண்டு, குளிர் காரணமாக, வெயில் காரணமாக, சரீர பலவீனங்களின் நிமித்தம் ஆண்டவரே இப்படி உலகம் முழுவதிலும் யாரெல்லாம் உடைய ஜனங்கள் இருக்கிறார்களோ கத்தர் அவர்களை நினைத்தருளுங்க, ஆசீர்வதிங்க. அவர்கள் ஆண்டவரே கத்தருக்கென்று ஓடியவர்கள், கத்தருக்காய் வாழ்ந்தவர்கள். இந்த நாட்கள் யாரெல்லாம் தனிமையா இருக்கிறார்களோ ஆண்டவரே, இந்த நாட்கள் நடக்க முடியாமல், எழும்ப முடியாமல், துதிக்க முடியாமல், ஜபிக்க முடியாமல் இருக்கிறார்களோ ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தாவே நீங்கள் தட்டி எழுப்பி பலப்படுத்தி திடப்படுத்தி, பலவீனங்களை நீக்கி, சுகவீனங்களை நீக்கி, அப்பா நல்ல சுக பலன் ஆரோக்கியங்களை கொடுக்கும்படியாய் கூட ஜெபிக்கிறோம். ரவி ஐயாவுக்கு நல்ல சுக பலன் ஆரோக்கியங்களை கொடுங்க ஆண்டவரே. கர்த்தாவே தெய்வமே, அவருடைய இலங்கை பயணத்திலே தேவனே உடைய கரத்தை வைத்து ஆசீர்வதிங்க. இம்மானுவேல் ஐயாவுக்கு நல்ல சுகபலன் ஆரோக்கியங்களை கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க. எஸ்பிஎம்ல இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும், யாரெல்லாம் பலவீனத்தோடு இருக்கார்களோ ஆண்டவரே, அப்பா ஜபிக்க முடியாமல் இருக்கிறவர்கள் ஜப ஆவியை கொடுங்க, தடைகளை நீக்கி போடுங்க. உடைய பிள்ளைகள் உடைய சமூகத்திலே வந்து நின்று கத்திரை நோக்கி ஜபிக்கத்தக்கதான கிருபைகளை கொடுத்தருளுங்க ராஜா. கிருபையுள்ளவரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். கிருபையின் தேவனே உங்களை துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். துணையாளரே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. நன்றி, நன்றி, நன்றி ராஜா. ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு உங்களை துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். எங்கள் இயேசுவே, ராஜாவே.